0: सुनता मेरे कपड़ा पैकिंग कर दू तो श्याम जी को मिसेस कैंसर उपचार करा इंडिया सदै लिये जान पे
1: हो अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएंट ट्यूबिंग 60 काउंस या हाइपर आर्क लगायत का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में रहकर ट्यूमर फोक्सो कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कलेजो संबंधी कैंसर पाठेघर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ। कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम पूर्ण रूप में निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्क में उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने कैंसर पीड़ितहरूका लागि 1,00,000 सम्मको छूटको व्यवस्था पनि छ।
0: यस्तो सुविधा रहेछ। म अब कैंसर उपचार गराउन सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूटमा नै लिएर जान्छु।
2: फोन 0 5 4 94 3 33 4 93 5 55

0: फ्युचर में अब को डीजल महंगो हुए गई कारण ईवी गाड़ी चलने एकदम राम हम पर्खाई भी ईवी एकदम सजिलो लामो दूरी तय कर हम यही गाड़ी पूर्व पश्चिम सब घुमे आईसको क्योंकि डीजल को पैसा अनुसार हम सरकार ने तोक पैसा अब ईवी में तो अलसम तोको कति तोक् ईवी में कति पर्सेंट टैक्स लाँच कति पर्सेंट बैट लाँच इसको दूरी तय कर कति राख इसको पैसा ये अब सरकार ने के तब को पैसा उठ नहीं ट्रावल कर आरामदायक सीट आरामदायक हम एकदम लाइबिलिटी एकदम मजा मस्त सीट बसर जान सकने सीट होना कारण डीजल गाड़ी भाग हम ईवी गाड़ी नहीं चलता कि भाई आशा है हम
1: नमस्ते मुसुमन तमका विद्युतीय गाड़ी को अलग को अवस्था एकदम राम क्योंकि विद्युतीय गाड़ी ने तब को अभी डेली बेसिस रनिंग कस्ट कम कर इंधन को अभी वर्ल्ड वार भैर अलग सकि तो हिसाब से इंधन को जो आपूर्ति हम अज भी कम भैर लाइन बस्त पड़े पेट्रोल में पेट्रोल लगी हाकार मचिन घर में गाड़ी खाने के हिसाब से विद्युतीय गाड़ी एक हिसाब से इसको हम अल्टरनेटिव अप्सन भी भैया
2: प्रोग्राम करना हो मैं चल सकता हूँ ब्रिलियन ब्रांड बा हो डीजल गाड़ी किन्न अल सस्तों पर्च शुरू में तो इसमें मेन्टेनेंस हेरू सर हाई लुक को मेन्टेनेंस जाना तब को पर डे सर 25 किलोमीटर गाड़ी चलिए डीजल के भाव हेन 200 रुपये पर लीटर छिटी में तब 100 किलोमीटर उड़ाने भो अब तब 100 इंटू 200 तब को दिन को 800 को फ्यूल जान नहीं जाना वो हम ईवी बने तब को सात सौ को चार्ज में पर यूनिट 7 रुपया होता 100% तब फ्यूल जाग हो तब 300 को एवरेज दिखा कहाँ 8000 फ्यूल में कहाँ 700
3: शेखर गजले आर्थिक रूप में अब एटा हमें ट्याक्की निकालेको डेटा कस्तो छ भन्दा खेरि 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल्दाखेरि झन्डै झन्डै डीजल गाड़ी चलाउने भन्दा ईवी में चलायो भने 1 करोड़ जति चाहिँ बच्ने रहेछ जबकि यह गाड़ी को वारेन्टी भनेको 10 वर्ष 10,00,000 किलोमीटर हो क्या 10,00,000 में तो 10 करोड़ बचाए तो उसे सेविंग मात्र भयो शुरू में अलिकति लगानी बढ़ी पर्यो भने कस्ट धेरै नै बस्ने वाला 3 महीना में गाड़ी छिर्ने हो 15-20 हजार को खर्च आने
4: नेपाल दर्पणमा अभ्यौता विदेशको खबर इक्वेडरले एलनिनो जलवायु घटनाका कारण देशभर उच्च सतर्कता जारी गर्दै आपतकाल घोषणा गरेको छ इक्वेडरको जोखिम व्यवस्थापन मन्त्रालयले एलनिनोको सम्भावित प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै देशभर उच्च सतर्कता जारी गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ सतर्कतासँगै सम्भावित जोखिममुक्त क्षेत्रबाट नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र अन्य आपतकालीन उपाय समन्वय गर्न सम्बन्धित समितिहरू सक्रिय हुनेछन् इक्वेडरले देशको पूर्वमा पर्ने अमेजन क्षेत्रमा खडेरी र को जोखिम बढ़ने अनुमान गरेको छ एलिनो समुद्र को पानी सामान्य भन्दा बढ़ी तातेको अवस्था हो नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर राष्ट्रीय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामी छानेले आफ्नो एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले बाढ़ीबाट प्रभावितहरूका लागि सहयोग गर्ने बताएका हुन् यस्तै सन्दीपले आजदेखि मलेसियामा शुरू भएको एसीसी प्रिमियर कप प्रतियोगिता भरि नेपालले लिने हरेक विकेट तथा नेपाली टोलीले प्रहार गर्ने हरेक चौका र छक्का बापत समान 1,500 रूपियाँ सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन् खेलकुदको प्रतिष्ठित एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड 2082 को चार विधाका मनोनयन सार्वजनिक भएको छ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफ को खेलाड़ी छनौट समितिले आज वर्ष उत्कृष्ट पुरूष खेलाड़ी वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाड़ी वर्ष उत्कृष्ट युवा खेलाड़ी र वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा समान 5 मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो यसैबीच आयोजकले यस पटकको अवार्ड बाढ़ी पीड़ितलाई समर्पित गर्ने समेत बताएको छ खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं आजका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक भोटेपछि बाढ़ीको आज 5 दिन पनि उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका काम निरन्तर अति प्रभावित क्षेत्रमै उद्धार र अन्य व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो माथिल्लो तिर्चुली थिए जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो मुख्य भाग भेटियो प्वाल पारेर सुरक्षाकर्मी छिर्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएको भनाई कृष्णभीरमा भाषिएको सड़क अध्ययनका लागि विभागीय विज्ञ टोली खटायो दुईवटा वैकल्पिक बाटो बाटो गाड़ी चल्न सक्ने वंशी सत्रवर्षी सड़क 2 हप्ता भित्र खुलाउने गरी तयारी इक्वेडरमा एलिनोका कारण आपतकाल घोषणा सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै देशभर उच्च सतर्कता र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान लामी छानेले एक महिनाको तलब विपद घोषणा दिने एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्डको चार विधाका मनोनयन सार्वजनिक प्राविधिक साथी संघर्ष हामी महेश गेवाली र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं बाढ़ी प्रभावित र नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्ज्वल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
4: It's 7 p.m. Start the post at business.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु